0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई, कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कॉपी हेरी थी, ना कबू पेंसिल हेरी थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए का आनल झोला दस का टस बाटी, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई।
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में, रख गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 8

0: गरेको भए होइन गरिहाल्नुहोस्। यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
1: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिल सँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भर पर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनेन्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
0: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
1: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
0: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
1: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
2: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग्घ आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिक म बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उक्र संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सबको रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली, फोन नंबर 0915600095 ओ मोबाइल नंबर 9848423।

0: ना आता छा सांप कुछ नहीं कराए सम सांप कुछ नहीं करता लिया वो अपने चल गई था कुछ कराए था वो सबको सांप बिखा फिर नहीं रहता
1: बिखा हो कि नहीं हो कसी कसी हिना था दाई
2: लिया नेपाल में पाँच दिन बिखा सांपन का विषय में सुन एक थोड़ा ठह गरे था जो उन खास कह कर रात के समय में घर भीतर बैठे से ये कटला से निबटाई फिर सियाकर तरह कटला पास है देह भाग जो निचलना कह कर सांस फैर जो निचेकना में से लक्को हुई से था और रथ डोम जो उन बड़ा रिसाह में हिक रथ इनकर फाट फूले था डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह कर संजय बिहान देख पड़ता इनकर कटला से फिर लक्को हुई से था वो और रथ कैदी जाटक सांप इनकर कटला कला से कटला भाग सुई था वो बड़ा कर रसे बैठे था रकत थे पाती होकर रकत बहना हुई से था उसने कहा हमारे देशक तरह एक सक्कू भूभाग में पा देना बगोपने न फुनकार ना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिंकन कटाई एकदम खतरनाक था
3: बर्खा छाया को अनाज भिजी ना समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना धीर मिना कर था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा ना सुबेर सापन का दसाई का घटना धीर मिना कर लग पा जाए
4: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नहीं रहा वह फिर यदि सपा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
0: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिख सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
7: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
8: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
7: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
8: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
9: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98584899213, इमेल ocmcticapur@gmail.com।

0: प्रयोगशाला सेवा, बायोकेमिस्ट्री, इम्युनोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पारासिटोलॉजी, सेरोलॉजी, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, डिजिटल वीडियो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे सेवा, ईसीजी, फिजियोथेरापी सेवा, अस्पताल का अन्य सेवाहरू, स्वास्थ्य बीमा सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा,
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: इमर्जेन्सी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, सब वाहन सेवा,
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा, मेडिको लिगल सेवा,
0: सब परीक्षण सेवा, सर्पदंशको उपचार,
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा इकाई,
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा, एआरटी सेवा, टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा,
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488, सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35, उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरीको फोन नम्बर 98-57-85-63-22 खबर गर्नुहोला वा टिकापुर अस्पतालको क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत, का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन उकना घर हेरो ना, पटा सुगुर बनैल बाट। आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो होना, कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र
4: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
3: के छ त विकल्प?
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
4: अहँ हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ,
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली का।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़ो ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी।
1: लिया लिया मैं अभी ही जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98 484 22 373।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846477417
4: बैंक ले कभैले कसै अवस्था मिलै तमरो एटीएम मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ को गोप्य विवरण माग्दैन यदि कसैले कसै माध्यम बठियाइलै तुमसँग तसो जानकारी माग्याका खण्डमी बुझिहाल्या उहिले तुमलाई छग्दु खोज्जाछ सँगै बैंक को कर्मचारी भएको दावी अध्या हरेक मान्छेको पहिचान प्रमाणित हरु उनरो विवरण मागिबर बैंकमी सोधौं सतर्क रहौं ठगी बठिए बसु
5: सिद्धार्थ बैंक पठियाई जनहितमी जारी सन्देश
6: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सदैभरिलाई।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां क्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मा फेर सुन्ति रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से सामुदायिक बनुआ के सहयोग से शैक्षिक गुणस्तर में सहयोग पुगल अभिभावक खुकरन के कहाई। बाढ़ी जन्य विपट से बचक लाख समुदाय की सक्रियता बढ़ती। पूर्वाधार निर्माण हो पूर्व कार्य से जोखिम न्यूनीकरण में सरकार स्थानीय हुकरण के कहाई। पूर्व पश्चिम में सांसदीय दल के बैठक आगे कांग्रेस के 2 मंत्री सहित 5 सांसद हुकरण बीच छुट्टे छलफल हो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति में दल के सदस्य रोकल हिउदेव बर्खी विदा के कटौती। पूरा खबर पाचक समय में सामुदायिक बनवा उपभोक्ता हुकरण के वन पैदावार बिक्री वितरण करना के साथ सामाजिक विकास माफे काम करती रहल बाटें। सामाजिक विकास ओर के काम भवन निर्माण संघ संस्था है सामग्री वितरण शैक्षिक गुणस्तर में सहयोग पुगैना उद्देश्य से विद्यालय है सामग्री वितरण करके अति विपन्न परिवार के बाल बालिका हुकरण शैक्षिक सामग्री संगे ड्रेस वितरण और नगद सहयोग करल बताइल बा। जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 9 कटासे स्थित के चेतना सामुदायिक बनुआ से विद्यालय के शैक्षिक गुणस्तर सुधार करना विद्यालय है शैक्षिक सामग्री वितरण और अति विपन्न परिवार के बाल बालिका हुकरण फे शैक्षिक सामग्री वितरण कॉपी किताब ड्रेस लगायत के सामग्री प्रदान करगिल सामुदायिक बनुआ के अध्यक्ष जनक सोडारी के कहाइबा। सामुदायिक बनुआ आपन बाल बालिका हुकरण शैक्षिक सामग्री गुणस्तर सामग्री प्रदान करल से फेन पढ़ना लिखना में सहयोग पुगल अभिभावक गीता बिका के कहाइबा। अभिभावक मान बहादुर बिका फे आपन कमजोर अवस्था रहल बेला छैछावा हुकरण सामुदायिक बनुआ से सहयोग करल पाछे खुशी लागल बटोले बाटे। सामुदायिक बनुआ में शैक्षिक सामग्री पाइल पाछे विद्यालय में बाल बालिका हुकरण शैक्षिक क्रियाकलाप क्रैन सहयोग पुगल बा। विद्यार्थी हुकरण के सहयोग पाइल पाछे शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुई जानकी 9 कटासे के बिन्दवासनीय आधारभूत विद्यालय के शिक्षक सरस्वती सोडारी की कहाइबा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा में नेपाली कांग्रेस के सांसदीय दल के बैठक बैठना आगे 2 मंत्री सहित 5 जने प्रदेश सदस्य हुकरण के छुट्टे छलफल करल बाटे। मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह से अपने सरकारी निवास में कांग्रेस सांसदीय दल के बैठक बोला गेल बा। सरकार से आसार 1 गते प्रस्तुत करलक बजट ऊपर काल से प्रदेश सभा में छलफल शुरू होना तैयारी हुसेकल बेला बैठक आह्वान करगिले खो। सांसदीय दल के बैठक आगे प्रदेश पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय संगे संबंधित 2 मंत्री और 3 सांसद हुकरण के बजट तथा समसामयिक राजनीतिक विषय में फिर छलफल करल प्रदेश सभा सदस्य दीवान सिंह बिस्ता जानकारी दिले बाटे। वहां के अनुसार बजट में देगिल समस्या समाधान के लाग पार्टी के केन्द्र से लेके महामंत्री प्रदीप पौडेल हे समेत सुदूरपश्चिम मां समेत पठा गेल बा। छलफल में उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री मान बहादुर रावल सामाजिक विकास मंत्री बेल बहादुर राणा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति देवान सिंह बिस्ता विशेष अधिकार समिति सभापति तुलसी देवकोटाओ प्रदेश सभा सदस्य ललिता सुनार सहभागिता जनायल हए। सुदूरपश्चिम में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व के सरकार रहला से फेन बजट वितरण हे लैके पार्टी भीतर असंतुष्टि बढ़ती गेल बा। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पाछ फेर से यही सुनते रहि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: चुरे जोगाऊ पानी का मुहान बचाऊ वन विनाश र अवैध उत्खनन रोकौ हरियाली बढ़ाऊ चुरे को संरक्षण हाम्रो दायित्व हो समृद्ध र सुरक्षित भविष्य को आधार हो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लंकी कैलाली द्वारा जनहित में जारी संदेश।
2: भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुरमा साउन 9 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिज आएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको ढड़कन कम ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नसाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ ईसीजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको नजिकै टीकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-770। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते दोस्रो शनिबार।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। कैलालीमा ट्राफिक प्रहरी से राजमार्गमा सवारी साधन चलैना चालक उपकरण लक्षित करके लागू औषध सेवन लापासे परीक्षण शुरू करल बा। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय से गोदावरी नगरपालिका के क्षेत्रमा सवारी चालक है रोक के लापासे परीक्षण करल बताए गेल बा। उक्रममा 32 जाने चालक हुकरा से परीक्षण करबेर समेत 5 जाने चालक हुकरन के लागो सर सेवन करके सवारी चलाएल पुष्टि हुई। पाछे पकड़ाव कर गिलेख हो। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रेशमा आचार्य के अनुसार लागू औषध सेवन करके सवारी चलाएल पाइल पाछे वहां उक्रम नियंत्रणमा लेहल बताए गेल बा। प्रहरी के अनुसार पकड़ाव पर्लाक 5 मध्ये 4 जाने पहाड़ी रूट में सवारी चलाए बताएगी बा। सबको 5 जाने लागू औषध सेवन करल पुष्टि हुई निरीक्षक आचार्य जानकारी देगी बा। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल से भूमिहीन और सुकुमवासी उकरण की समस्या समाधान करना सरकार से उच्च प्राथमिकता के साथ काम करते रहना बताएगी बा। राष्ट्रीय सभा के कालिक बैठक में विनियोजन विधेयक 2083 के छलफल के क्रम में उठल प्रश्न के जवाब देती वहां सरकार भूमिहीन उकरण जग्गा देना नीति लेलक जानकारी देले बाट। भूमि व्यवस्था मंत्री रावल से वैज्ञानिक भूमि सुधार उपत्यका केन्द्रित भूमि व्यवस्थापन तथा स्थानीय तह के समेत सुदृढ़ीकरण हे उच्च प्राथमिकता साथ काम करते रहल सदन हे जानकारी करैले बाट। सरकार से राजनीतिक दल हुकरण के सदस्यता लेहल व्यक्ति हुकरण विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष और सदस्य होना रोक लगा गिल बा। गैल बिफेक दिन के स्वीकृति शिक्षा नियमावली के 10 संशोधन में राजनीतिक दल हुकरण के सदस्यता रहल व्यक्ति हुकरण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हुईना नई पैना प्रावधान समेत धरगिल बा। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुईना सेफे समेत कमती में 5 वर्ष आगे से लेके कौनो राजनैतिक दल हुकरण के सदस्यता नहीं लेलक संशोधित नियमावली में कहल बताएगिल बा। भ्रष्टाचार अस्तक जबरदस्ती करनी मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार तोड़फोड़ तथा समेत आगजानी लागू औषध बिक्री वितरण तथा ओसार पोसार संपत्ति शुद्धिकरण में अवैध रूप में वन्यजन्तु ओसार पोसार में संगठित अपराध राहदानी समेत दुरूपयोग जातीय भेदभाव छुआछूत अपहरण संबंधी कसूर वा नैतिक पतन से लेके फौजदारी कसूर में अदालत मन से सजाए पायल व्यक्ति फे समिति के अध्यक्ष वा सदस्य हुई पैना कहलबा हुई नई पैना कहलबा उसक हिउदे ओबरखे विदा कटौती करलबा कलर से अब 30 दिन के विदा देना कहलबा। यागे हिउदे ओबरखे विदा 45 दिन रह सरकार से शनिचर के अटवार के दुई दिन विदा रहलक ओर से हिउदे हो बर्खे विदा कटौती करलक हो मनोविद्यालय में काम करना समयभर 220 दिन नई धरल बटागिल बा। संपत्ति शुद्धिकरण के अनुसंधान विभाग से पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के छावा जैवीर देउवा है एक साता भीतर बयान केलक उपस्थित हुईना पत्र काटल बा। विभाग से सोमवार के बुढ़ानील कंठ स्थित के देउवा के समेत भागेश्वर मरपुक के समेत बयान केलक ऐना कहके पत्र टांस करल बता गिल बा। असके पत्र में जैवीर ऊपर संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी कसूर अनुसंधान चलती रलक बेला उल्लेख कर गिलबा। विभाग से ये आगे नई शेरबहादुर देउवा आरजू राणा देउवा ऊपर अनुसंधान करना पूर्जी काट से कल रह जैवीर ऊपर नेपाल टेलीकॉम के समेत बिलिंग ठेक्का अनियमितता पासपोर्ट के ठेक्का अनियमितता में संलग्न रलक आरोप में अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग संपत्ति शुद्धिकरण विभाग लगायत की निकाय से उजुरी परल बता गिलबा। उहार अनुसंधान केलाक फे ऐना नाम में बयान केलाक पूर्जी काटल स्रोत के कहाई रहल बा। पशु सेवा विभाग से बर्ड फ्लू से प्रभावित 11 जिला में रोग नियंत्रण के क्रम में नष्ट करलक पंक्षी तथा वस्तु हुकरण के क्षतिपूर्ति स्वरूप ₹52 करोड़ एक साता भीतर किसान हुकरण उपलब्ध करेन तैयारी करल बा। विभाग से रोग नियंत्रण के क्रम में किसान हुकरण नष्ट करगिलक पंछी अंडा तथा दाना बाफत के संबंधित धनी हुकरण क्षति रकम मूल्यांकन आधार में 75% राहत स्वरूप उपलब्ध करेन तैयारी करल बतागिल बा। विभाग के प्रवक्ता मुकुल उपाध्याय पंछी जन्य पदार्थ पंछी उत्पादन सामग्री के क्षति प्रमाणित हुईलक माग दाबी करलक सम्पत्ति धनी उकरण के बैंक खाता में एक साता भीतर रकम भुगतानी करना जानकारी करा गिलबा। खोजखर माया गरी विश्राम विश्राम पाछ फेर सही भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
3: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
4: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किङ पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588
5: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
6: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
5: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई को यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
6: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
0: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846777417।
7: विश्राम पाछ फेर से स्वागत बा। नौलप्रासी के पलहिन नंदन गांवपालिका के अध्यक्ष बैजनाथ बैजू प्रसाद गुप्ता विरूद्ध के 3,45,49,166 रूपया के भ्रष्टाचार के मुद्दा दायर हुई बा।
0: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारी के अनुसार गुप्ता गाउँपालिका के अध्यक्ष पद में निर्वाचित हुलक मिति 2074 असार 20 गते से लैके 2079 असार 28 गते सम के अवधि में 5 अवधि कायम करके निज और निज के समेत एक घर परिवार संगोल में रहल व्यक्ति के उक्त अवधि में निज सार्वजनिक सेवा समेत प्रवेश पूर्व के समेत एक संगोल परिवार के समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था में रहल मौजदात रकम पारिश्रमिक समेत बचत ऋण कृषि समेत के कुल आय जम्मा 3,51,52,620 रूपया देख परल बा। ओ अवधि में अध्ययन खर्च घर निर्माण खरीद करबेर लागल खर्च वस्तक रकम बीमा प्रीमियम बापत के भुगतानी करलक जम्मा कंपनी औसक लगानी करलक खर्च करके कुल खर्च जम्मा 6,97,81,788 रूपया देख परल बतागिल बा। उफिफा विश्वकप राउण्ड अप 16 अन्तर्गत हुईलाक रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धामा स्पेन से पोर्चुगल 1-0 गोल से पराजित गर्थी क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित बनाइल बा। अमेरिका के डलास खेल मैदान मा हुईलक खेल में निर्धारित 90 मिनट सम दोनों टोली से गोल कर नई सेकलक पार से खेल अतिरिक्त समय में जैना संकेत देख पड़ल है। मनोखेल के दूसरा हाफ के अतिरिक्त समय में मिकेल मेरिनो से समेत निर्णायक गोल करती स्पेन है महत्वपूर्ण जीत देवायल बतायल बा। जीत संगे स्पेन विश्वकप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करल बा। कल से पोर्चुगल है उपाधि के यात्रा समेत राउंड अप 16 में समाप्त करल बा। यह बीच में स्पेन 16 वर्ष पाछे विश्वकप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करल के हो। यह आगे सन 2010 में विश्वकप चैंपियन बन सकलक स्पेन यहां क्वार्टर फाइनल में पुग नई सकल रह। अंतिम समय में विजय स्पेन विजय हुई संगे समेत पोर्चुगल विश्वकप से बाहर हुई बतागिल बा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 9 कटास स्थित के चेतना सामुदायिक बनुआ के सहयोग से शैक्षिक गुणस्तर में सहयोग पुगल अभिभावक हुकरन के कहा। बाढ़ जन्य विपट से बचक लाख सक्रिय समुदाय बंती पूर्वाधार निर्माण और पूर्व कार्य से जोखिम न्यूनीकरण में सहयोग पुगल स्थानीय हुकरन के कहा। पश्चिम में संसदीय दल के बैठक आगे कांग्रेस के दुई मंत्री सहित 5 सांसद फुंकरा छुट्टे छलफल में ओ विद्यालय व्यवस्थापन समिति में दल के सदस्य हुकरन रोकना हिउदे बर्खे विदा कटौती लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्याह खबर सुना सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाफ्रम सुनते रह राम राम।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे गुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ते खोस्ते परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे के कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वात खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 और 9846239161
2: लैंगिक हिंसा प्रभावित गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवा का लागि टीकापुर अस्पताल में रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकारी गरौं।
3: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
4: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
3: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
4: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
5: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9584899213 इमेल ocmcticapur@gmail.com।

0: ए भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन त भाउ के पाउँछ त्यहाँ?
1: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
2: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
3: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
4: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतोल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला टेरस।
5: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला टेरस।
6: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
4: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 98484463 र 98164602204।
7: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
8: कोट पेट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नाई देना, बोले नाई देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
7: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
8: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
7: हिंसा अपने फेनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
9: ए माया, तिमी कति राम्रो नि, तिमी अघि अघि म पछि।

0: मा आफ्ना बैरागले गाउँछु बैसाख मनाउँछु
1: काठे सागो चुनक चुनक जुत्ता भड्कुनाले मेरा ताई पराया बिया।

0: आता छावा सांप कुछ नहीं कराय सांप कुछ नहीं करता लिया वो अपने चल गए कुछ कराय वो सब कुछ सांप बिखा थे नहीं रहता
1: बिखा हो कि नहीं हो कसी कसी हिना दाई
2: लिया नेपाल में पा दिना बिखा सांपन का विषय में सुन एक गरैचा जोन खास कह रातिक समय में घर भीतर बैठ सकता ई कटला से निबाई फे सकत तर कटलक पाछ देह भाग जो निचलना कह सास फैर जो निसेकना में से लक् हो सकता और रठ डोम जोन बड़ा रिसाहा मेहरिक रठ फाट फूले डोम सांप दिन व रात दुनू में देख पड़ना वो खास कह संजा बिहान देख पड़ निक्र कटल से फिर लक्वा हुई से वो और रठ कैरी जाटक सांप निक्र कटल कल से कटलक भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बठे था रकत फिर पाती होकर रकत बहना हुई से था उसे का हमार देशक तराई सक्कू भूभाग में पा देना बहुपने न फुनका रहना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिंकम कटाई एकदम खतरनाक रहा
3: बर्खा छ्या अनाज बिग्रिना समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना ढीर बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नाशिदे सापन का दसाई का घटना ढीर बिना कर लग पा जाए
4: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नहीं रहा वह फिर यदि सपा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
0: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाएक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिख सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसंधान केन्द्र संघ को सहकार्य में रोटरी इंटरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाण्डौ मिटटाउन का साथ साथ ही विश्वभर का रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लब द्वारा जनहित का लागि प्रस्तुत संदेश
6: टीकापुर को विकास का लागि के गर्दैछ नगरपालिका
7: नगर विकास का लागि नगरवासी को दायित्व के हुनु पर्छ
8: नगर विकास मा नागरिक को सहभागिता कसरी बढ़ाने र नगरपालिका को काम कारवाही र सेवा प्रभाव बारे जानकारी दिने कार्यक्रम हाम्रो टीकापुर
6: टीकापुर नगर कार्यपालिका को सहयोग मा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम को उत्पादन कार्यक्रम हाम्रो टीकापुर हरेक साता को बिहीबार बिहान 7:30 बजे र पुनः प्रसारण
0: बिहीबार दिवसो 3 बजे सुन्न सक्नुहुनेछ।

0: जारी।
1: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमबाट जनहितमा जारी सन्देश।
2: कार्यक्रम मझेरी मझेरी मझेरी।
3: भैया न करा रेडु बिक्री
4: नहीं का मम्मी, टीकापुर एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगबा का।
2: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक, अपने के मन में जोन प्रतिभा आई था वो प्रतिभा सुना एक लग आई। कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर, कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़े चुरुंगर जानवर की आवाज, कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुना एक लग हम फोन करी। साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी। केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।
5: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था काकना हो बाबा फिर उस टपाटीन गतिलो ठाउं से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं रहे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर भर रही थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कही था कभी पेंसिल हेरा कही था कभी झोले फटाका कही था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकटो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कापी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटीन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: बाबू, ए बाबू, कल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
1: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुंजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846477417।
4: पंछी पालन व्यवसाय हरुका लागि जरूरी सूचना। बर्ड फ्लू H5N1 पंछी में लगने उच्च मृत्युदर भएको संक्रामक रोग हो। विगत 3 महीना देखि देश का विभिन्न स्थान में यह रोग देखा परि रहेको छ। पशु सेवा विभाग सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा रोग नियन्त्रण का प्रयास भइरहेका छन्। तसर्थ पंछी पालक कृषक व्यवसायीहरूले रोग को संक्रमणबाट बच्न एवं रोग नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निम्न कुराहरूको पालना गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौ। फार्म परिसरमा जैविक सुरक्षाका विधिहरू अवलम्बन गर्ने, अण्डा राख्ने पुरानो कागजको क्रेट पुनः प्रयोगमा नल्याउने तथा ढुवानीको साधनलाई फार्म परिसरभित्र ल्याउनु पर्ने भएमा पूर्ण रूपमा निसंक्रमण गरेर मात्र भित्र्याउने, काग लगायतका जंगली पंक्षीसँग घरेलु पंक्षी तथा पंक्षीको दाना लसपस हुन नदिने गरी थुनेर राख्ने, पंक्षी तथा पंक्षीजन्य उत्पादनको ओसार पसार गर्दा अनिवार्य रूपमा भेटेरिनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र गर्ने, कुनै पनि पंक्षी फार्म वा बिक्री स्थलमा अस्वाभाविक रूपमा धेरै संख्यामा पंक्षी बिरामी परेमा वा मरेमा तुरन्त नजिकैको पशु सेवाका निकायमा जानकारी गर्ने र बिरामी वा मरेका पंक्षीको मासु बिक्री सेवन नगर्नु हुन अनुरोध गर्दै यो रोग नियन्त्रणमा सहयोगको लागि सबै सरकारवालाहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। रानी जमरा कुलरिया सिटिङ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्रेक्टर, बस, ट्रक, टिपर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-4857-1828।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
4: मै नै जाइ, उहाँ अपन अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर्छु।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगारके परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद करबी, मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा।
6: सम्पर्क मनिष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।

जय गुरु बाबा। घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपने के मन की आवाज, समाज के लक्ष्य मावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz के विद्युतीय तरंग मार्फत कार्यक्रम अन्ताक्षरी अपने कला के सलाह के बैठक सबको रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रह स्वागत के संगे अभिवादन कर चाहो मैमिशन अमी क्या बैठक में बैठ के साथ देते हैं बाबू रत्न पुन मगर और मई बाटो अपने के अपने संग्रह मैमिशन संगारे कस्तिन बहाल खबर बेकुल कुशल मंगल आराम हुई भी मैं एकदम आराम बाटो अपने हुकरे फिर एकदम आराम हुई भी कना भरपूर आसने बाटो जे जहां हुई भी खेत में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विपटाल में यात्रा में जहां रहे से कार्यक्रम में सहभागी जनते कार्यक्रम में अटे कर भी कना मैं आप लोग जानकारी करती बाटू तो फटाफट चाहिए अपने ग्राम डायल कर भी 0915-61-255 के लाइन एकदम खुला बा कार्यक्रम में सहभागी जनाई कल से अपने को हमारे रमाइलो गफी रमाइलो बातचीत हुई कना मैं आप लोग जानकारी करती बाटू तो विशेष करके गीत गायना इच्छा रहा रुचि रहा शौक रहा संगारे हमन कॉल करिए और हमन कही कि मई विशेष करके हमारे आज अंताक्षरी खेला तीन चोट अपने तीन चोट मई गेम थारो नेपाली भोजपुरी भाषा के गीत गायना हो तो अंताक्षरी खेलना हो कम्पिटिशन नहीं हो अंताक्षरी खेलना हो रमाइल करना हो जत्रा से जाए उतरा गीत गायना हो कना मैं कहना चाहू संगारे भी आज बद्री टो लागल बा तरा घाम लगती बा कैसी हो बदर घमा टाइप की घाम बा कोहर कोहर पानी बरसता या पानी बरसना घाम हो कैसी हो तर चटकार घाम तो नहीं हो बद्री अशक तरा घाम चाहिए बा कना लगती बा तो जे जहां हुई भी खेत में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में बिपटल में यात्रा में जहां रहे से कार्यक्रम में सहभागी जनाइटे कर भी कार्यक्रम में आईटे कर भी अपने पर हमारे रमाइलो सहभागिता थी कना में जानकारी करती कार्यक्रम के शुरुआत में श्री गणेश कर रमाइलो गीत से गीत के बाद से मैंने बाटो डायल करते कर भी 0915-61-255 लाइन खुलाई बाना।

हजुर बिल्कुल रमाइलो गीतको पाछ फ्यान्स स्वागतमा कार्यक्रममा कार्यक्रममा बाटो नामेसन मेकेसा देहटै बाबु रत्नापुर मगर यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz उसले कि हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्रो मार्फत अपने सुनेछ ठिकनामै जानकारी कति बाटो जे जहाँ भी कार्यक्रममा विशेष गरी अन्ताक्षरी खेलेकलाई गीत गाउन इच्छा रहल रुचि रहल सौक रहे हम कल करबी कार्यक्रम अपने हमकन के संगे हमें रमाइलो गप करना हो तो फटाफट चाहे डाल करबी कार्यक्रम में सहभागी जना एक तो कार्यक्रम में आईबी कर से अपने हमार रमाइलो गप हुई कहना मैं आपको जानकारी करती बटो तो डायल करते करबी कार्यक्रम में सहभागी जनते करबी अपने हमारे रमाइलो सहभागिता थी रमाइलो गप हुई कहना मैं आपको जानकारी करती बटो फटाफट डायल करबी और कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं हिचकिचा के मैफेन कौन कम मैफेन अंताक्षरी खेली सकम यही अल्छी समय है कुछ असम मैफेन रह रंगीत बनाई सकम ये अल्छी समय है मैफेन कुछ रमाइलो रसपान गरे सिक्किम कना सोच बनाके कार्यक्रममा सहभागी जनाइबिकनामै आफ्नो निवेदन गर्न चाहन्छु त फटाफट चाहिँ डाल गर्बी कार्यक्रममा सहभागी जनाइबिकनामै अर्जी गर्ती अनुरोध गर्ती कार्यक्रममा विशेष गरी यात्रा गर्बी गरे चाहिँ आइबी हाम्रो सँगै सँगै अन्ताक्षरी खेलेको गीत गाइन इच्छा रहल रुचि रहल चौक रहल सँगै हामी कल गर्बी कुछ नहीं हिचकिचाई भी मैं अंताक्षरी खेले नहीं सकम मई शायद अंताक्षरी खेलना में कुछ नहीं जानम कना मेरा एक मन में आत्मा बोध ही कर सी बिल्कुल ना सोच भी मैं फिर कौन काम मैं फिर कार्यक्रम में सहभागी जनाई सकम मैं फिर कार्यक्रम में आई सकम कना सोच बना के कार्यक्रम में सहभागी जनाई भी कना मैं आप लोग निवेदन करूँ तो फटाफट चाहे डायल करते कर भी सहभागी जनाते कर भी कना जानकारी करते फैन से ठाव की जोड़क गीत के पास मैंने बाटू डायल करते कर भी सुन 91 565 255 लाइन खुलेगा

0: बुका पिए रही था कबू पेंसिल ले रही था कबू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गतिलो ठाउं से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जलम भर भर भर थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चेक थो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: हजुर व्यापारिक विश्रामके पाछा फेन्स स्वागत कार्यक्रममा बाटोमा मिशन मिक्के साथ देट्ने बाबु रत्नपुर मगर ल व्यापारिक विश्रामके पाछामै धेरै बटवाके फेन्स एक ठाउँ इन्जोय कलक रमाइलो गीत जोडम गीतके पाछामै नै बाटो रेडियो स्वर्गे कहौँ भेने देवी अन्ताक्षरी खेलेक डायल गर्दै गरी 091-5-61-255 लाइन खोले भए तसम्मको लागि रमाइलो गीत आफ्नो कनके लाग्यो

हजुर बिल्कुल रमाइलो गीत सुन्दै सुन्थे लभलभ कार्यक्रम निर्धारित समय डगर काटे लागल टाटा बाई बाई क्या जना बेला हो गिल बाबु मारा ट्रबल लिसन रेडियो सुनकर साथ दिल आपको धन्यवाद और टेक्निक वेट के साथ है बाबू रत्नापुर मगर है धन्यवाद यदि अंतिम में एक ठर रमाइलो गीत छोड़ती मैं मिशन आएगा चाहम राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन आपके पल शुभ रहे रेडियो टीकापुर FM सुनते कर भी

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी
4: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
5: कुटपीट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
4: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठ भी OCMC स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
5: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
4: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली

0: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा
1: यही असार 27 गते शनिबारका दिन
0: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
1: डाक्टर आउने दिन असार 27 गते शनिबार।
0: आरोग्य मेडिकल एण्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
2: राहुल कमल हैन बुखाइल बाटो त
3: हेरिन काका आई फुला टुरे बारीमा गेल रही सबो काट देली बीस निकाल देवी की कैके लैके आयल बाटो
2: सबो कटक विषक उपचार कर त सर्वदम सब उपचार केन्द्र में ले जाए पठाक हूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा कार्य प्राप्त चिकित्सक हूँ बिखार सब पकट लगो कि नहीं हो के पता लगा ख सर्पदम से उपचार में प्रयोग है ना एंटी भेनम से उपचार कर
3: सर्पदम से उपचार केन्द्र के विषय में मैं फिर सुनल तो रहूँ
2: सर कुछ दिन कही आना तुरंत उपचार केन्द्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी भेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था हस्तक्षेप चिंता नहीं पड़त
3: भाई ना तब ना ट्रेन कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकली बात
2: एम्बुलेंस आपूंगा समय लागत था मर्छवा सन्देश मोटरसाइकल में बैठा कर तुहन उपचार केन्द्र में ले जा दी रे बाबू सन्देश रोक झट बाहर आता
4: सर्पदंश प्रभावित जिल्ला में बेरमेन का समय में जो उपचार के ख जान जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केन्द्र संचालन में बा यी उपचार केन्द्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था सापन का कटाई ले मनन का मृत्यु न सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटीभेनम निःशुल्क उपलब्ध करेलबा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र संपर्क नंबर ठरलरह पठा सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेजिथा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ लु भन त बाउ के पाउँछ त्यहाँ
7: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर ढक तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ
8: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलकाका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि
9: त्यति मात्र होइन त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ
6: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ
10: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स
11: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स
12: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर
10: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा सम्पर्क फोन नम्बर 9844648673 र 9814680204

0: अनुभवहरूलाई नास्ट कलेजका तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। उच्च जीवन स्तर निर्माणका लागि निर्णायक क्षण यही हो।
1: विगत 27 वर्षदेखि सेवारत QAA प्राप्त यस संस्थाका रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू BE कम्प्युटर, BCA, BBA, BE सिभिल का साथै MBA कार्यक्रममा सुनिश्चित उच्च जीवन स्तर निर्माणार्थ भर्ना फारम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। भर्ना फारम 2083 असार 32 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बुझाइ सक्नुहुन अनुरोध छ। प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 1 गते 10 बजे। साथै अनलाइन फारम nas.edu.np मा उपलब्ध छ।
0: नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास, उत्तर बिहडी 4 धनगढी, फोन नम्बर 091523312 र 523949।
2: घरेको भए होइन, गरिहाल्नुस्। यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
3: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिल सँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनेन्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
2: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
3: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
2: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
3: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
4: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
5: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, हुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: से कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला जस कटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
0: आई बुढ़ला सुनो कि नहीं वहाँ नंदी ध्वज आगिली ना अब समय एक ठो घर गहना नहीं हो बनेना उन्हें ना पट्टा नहीं पहना था
3: अरे गहना बनेना तो हो दुकान खोजती खोजती परेशान आतू कहाँ बनाऊ
0: तुम्हार बाटा स्तर तुम्हार रामपुरान दीदी ये नहीं सामुएल ज्वेलर्स में से गहना बना कान से कितना सुघर बना कर लबाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई और जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684141208 और 98486239261
4: भागीरथी मेडिकल टीकापुर में विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना डाक्टर बम बहादुर को क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेंटर टीकापुर में साउन 9 गते दोस्रो शनिवार का दिन नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत धेरै अनुभवी र सीनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ समस्याहरू मिर्गी रोग मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई भ्योस हुनु मुटुको धड़कन कम वा ज्यादा हुनु लामो समयदेखि टाउको दुख्नु छटपटी लाग्नु जिउ झमझम हुनु जलन हुनु चिन्ता मान्नु जीवनसित निराश हुनु आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु धेरै शंका मान्नु कानमा बोले जस्तो लाग्नु कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु काममा मन नलाग्नु झर्को मान्नु रिसाउनु बिना कारण हाँस्नु मुस्कुराउनु रुनु घर छोडेर भाग्नु यौन इच्छाको कमी हुनु जाँड गाँजा चरेस रक्सी ब्राउन सुगर नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ हाम्रो यहाँ इसीजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको नजिकै टीकापुर टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-685-40-777 समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म डाक्टर आउनु दिन साउन 9 गते दोस्रो शनिबार

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटाका आज कहा कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हेरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर बर
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरा दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल हेरे थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: বাবু, এ বাবু, কাল মনীষ মেডিকেল মে যাইস তো?
1: মই নাই যাই, উহা আপন অনুহার বিগার কে ঘর সে বাহির নাই নিকরছু।
0: উহে মারি তো তুহিন উহা পাঠাই তো। ইয়া হেল ই পত্রিকা মে লিখাল বা মনীষ মেডিকেল মে আব ছালা সম্বন্ধী সমস্যা রহল বিরামী হুকরন বড়িয়া ডাক্তার হইছে উপচার হুই তাই তোর সমস্যা ফেন আসতে বা যাইবে তো সমাধান হুই যাই।
1: এ হো দাদু, অপন অনুহার বিগার কে পরিশান রহু, তব তো মই অব্বিহি যাইম।
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बु से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, हुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो, जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टीकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
4: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
4: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरा पारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
6: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिपर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
4: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 9848528।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी हुकन स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उग्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मलाप सम्रपात्र और नेपाली पात्र मफी सुन्टी ढलवाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। कैलालीकी जानकी गांवपालिका में बढ़ियाजन्य विपद के जोखिम घटेना समुदाय मलगर बनैटी। एसई पूरक परीक्षा में 64.68% विद्यार्थी उत्तीर्ण। धरगनी में हत्याकलक तनुष के सुन के मुंडा कठाई के घर में फैला पड़ल। और प्रधानमंत्री कार्य के निर्देशन पाछा डीडीसी में दूध के गुणस्तर सुधार। कर्णाली और पथरिया लदे के कारण यहां हरेक बर्खा में डुबान के समस्या हुई। वड़ा नंबर 6 स्थित सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति लंकीपुरवा के अध्यक्ष तथा बड़घर जोग बहादुर चौधरी विपद व्यवस्थापन बारे अपना सक्षम हुई गैलक। पूर्व तैयारी बारे सीखलक। समुदाय में सूचना प्रभाव में बढ़ी प्राथमिकता दिनाक अलग बोटिल प्राथमिक उपचार कार्यदल के संयोजक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दीपक देवी नेपाने समुदाय में विद्यार्थी किसिम के तालीम दिलक। समुदाय में ईना मौसम अनुसार की विपद के सामना करना समुदाय के क्षमता बढ़ेना का लग बोटिल वहां समुदाय में कर्णाली नदी के पानी के अवस्था बारे समुदाय में जानकारी दिना खोज तथा उदार के लग आवश्यक सामग्री समेत हुई सहज बनकी गलग बोटिल विपद व्यवस्थापन समिति के उपाध्यक्ष जगत कुमार रानी कुलुआ कटान के बढ़िया के जोखिम रड़क दियाजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन थप जोखिम बढ़ती गलक जंगली जनावर के आतंक अलग ओमह ध्यान देना आवश्यक अलग बोटिल प्राथमिक उपचार कार्यदल के सदस्य बिना कठाई बढ़ाई के समय में सामान्य चोट पटक लगलग मनिन की समस्या पलक मनिन हकसिक बचैना कैना बारे तालीम लेलक पूर्व तैयारी मलक करलक बोटिल जानकी गांवपालिका वड़ा नंबर 6 के वड़ा अध्यक्ष इंद्र चौधरी विपद व्यवस्थापन में काम करलक गुणस समुदाय स्तरीय समिति धेर प्रभावकारी काम करती रहल। संघ संस्था के सहयोग पालिका के समुदाय में रलग विपद व्यवस्थापन समिति के क्षमता विकास उलग बोटिल संग जानकी मौसम पूर्वानुमान संबंधी सूचना वड़ा तथा समुदाय के संयंत्र मसे भरिया मसे संभावित जोखिम में रलग समुदाय में पुगना करना पूर्व सूचना में बढ़ी काम हुईलक जोखिम कम होना करलबा समुदाय में रलग विपद व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुलक विपद जोखिम न्यूनीकरण सहयोग पुलक वहां के कहाइबा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई 2082 के पूरक अर्थात ग्रेड वृद्धि परीक्षा में 64.68% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुईलबाट बोर्ड के आज पूरक परीक्षा के नतीजा सार्वजनिक कलक जानकारी देती परीक्षा में 83,523 जना अर्थात 64.68% छात्र छात्रा उत्तीर्ण हुईलक परीक्षा नियंत्रक टुकराज अधिकारी बोटिलोट यही असार 1 गते से 9 गते समय संचालन हुईलक पूरक परीक्षा में सहभागी हुईलक 1,46,507 परीक्षा अर्थी आवेदन दिलक 1,29,114 जना परीक्षार्थी फिर सहभागी रलक वहां जानकारी दिल परीक्षार्थी राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और परीक्षा नियंत्रण कार्यदल कक्षा 10 के वेबसाइट एसएमएस यूएसएसडी तथा आईभीआर सेवा मार्फत नतीजा हेरा सेक्ना वहां जानकारी दिल नतीजा हेना सिम्बोल नंबर और जन्मति प्रयोग करके गेट सीट डाउनलोड करना व्यवस्था हुई करलबा परीक्षार्थी के नतीजा प्रति चित्त नई भूजक परीक्षार्थी असार 25 गते से 31 गते समय अनलाइन मार्फत पूर्णयोग उत्तर पुस्तिका अवलोकन तथा पुनः परीक्षण के लाग आवेदन देना सेक्ना वहां जानकारी दिल बाट। धनगढ़ी में 10 वर्षीय बालक तनु चौधरी के हत्या कलक लुटलक सुन के मुद्रा प्रहरी बरामद कलवा गत असार 12 गते धनगढ़ी 17 के कालिका सामुदायिक वनमा में मृत फिला पलक तनुष के कान में लगेलक सुन के मुद्रा सोमवार पकड़ पलक अभियुक्त खेमराज कठायत बरामद कलबाट प्रहरी के अनुसार तनुष के हत्या में संलग्न हुईलक गौरी गंगा नगरपालिका 6 के 25 वर्षीय कठायत लागू औषध दुर्वेशन निर्लक को पैसा के लाख वहां के बालक के हत्या करके कान में लगे एक आना बराबर के सुन के मुंदा डुटलबाट खेमराज प्रारंभिक बयान में अपना सुन के मुंदा डुटलक स्वीकार कलक जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली जनेलवा प्रहरी के अनुसार तनुष के हत्या पाशक खेमराज सुन के मुद्रा निकाल के पैंट की खल्ती में लुकेल रहे मंगलवार कठायत के घर में उक्त सुन के मुंद्रा बरामद थुलक लाली प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नाई परीक्षक युगन्धर तिमिल सेना बटेलोबाट तनुज दश असारमा घरमा व्यवस्था हुई खोज तलाशके क्रममा घरलग घाँ सामुदायिक वनमा उहाँकी सफेला पर्ल रह खेमरा छकैलाली प्रहरी सोमबार सन्झ्याके धनगढ़ी दुई भन्सा रोड क्षेत्र मसिन नियन्त्रण लेलबाट उहाँकी भारत प्रवेशकना क्रममा पक्राउ पलक प्रहरी जनैलबा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा कार्यरत प्रहरी नायक निरीक्षक सुशील चन्दके नेतृत्वमा खटलक प्रहरी टोली खेमरा छ घटना हुलक दस दिन पछि पक्राउ कलबाट घटनाबारे थप अनुसन्धान हुटिरहल प्रहरी जनैलबा खोज खबरमा घरि विश्राम विश्राम पाछ फेरसेवी सुन्तिर सामुदायिक रेडियो टीका एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उक्र सम्पर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59
0: विश्राम पाछा फिरसे स्वागत बा सभाकी आजकै बैठकमा सांसद थुक्रो तराईमा खानेपानी सिंचाई लगायत सक्कु बाट केलाक पानकी अभाव होइन आम मरिनमा मार पर्लक तथा खेती लगेना समस्या हुटिरल कटी समयमा नै समस्या समाधानका नाममा कल्लबाट सांसद थुक्रो कर्णालीमा हरेक दिन दुर्घटना भर्ती गैलक तथा कर्णाली र देमा खस्त गाड़ी अभिन फेला नै पलक विषयमा सरकार ध्यान आकर्षण गरेथी कर्णालीकी सड़क सुधार मृतकके परिवार उचित क्षतिपूर्तिकी व्यवस्था गर्नाउ घाइतेकी निशुल्क उपचारके माग कल्लबाट सांसद थुक्रा चितवनके भरतपुरमा ध्रुवे हत्याके पाछक समय दायो छावाके ज्यान लेलक गरी 25 जना से धेर बढ़ीकी ज्यान होसेक लकटी उक्त हत्याके नियन्त्रणमा लेलक सुरक्षित ठाउँमा धरना तथा पीड़ित ठहर हातो स्थानीय सुरक्षित डेरा महाकलबाट सांसद थुक्रा बिना सूचना बस्तीमा से सुकुम्बासी हटेलक तथा व्यवस्थापन नै गरके होल्डिङ सेन्टरमा से फेरि हटेलक सुकुम्बासी कोन सड़कमा पुगेर कति उहाँको माग सम्बोधन गर्न महाकलबाट सांसद थुक्रा सुशासनके नारा सहित अहिलक सरकारके मन्त्रीके सचिवालयमा धेरनियुक्त कलक निजी विद्यालयमा मनलगलग रूपमा शुल्क असुली हुटिरह विद्युत महसुल तिर्के फे विद्युतके सहज आपूर्ति नै हुलक आम मनैनमा मार पर्तिरह लगायतके विषयमा सरकार ध्यान आकर्षण गर्नबाट स्थानीय बजारमा सुन चाँदीकी मूल्य घटलबा सोमबारकै तुलनामा सुन के तोलामा रू 1400 हो चाँदीमा रू 30 घटलबा नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघके अनुसार आज छपल सुनके प्रति तोला रू 2,88,000 ओत्रह परिमाणकी उज्जर धातुकी मूल्य रू 4,555 कायम हुनबा काहलिक सोमबार छपल सुनके प्रति तोला रू 2,89,400 ओत्रह नै परिमाणकी उज्जर धातुकी मूल्य रू 4,585 प्रति तोला कायम हुन रह
4: कौनो व्यक्ति करल अन्याय।
0: खोज खबरमा फेरसे विश्राम विश्राम पाछ फेरसे विश्वन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टीका फर एफएम।
5: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
6: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नि करत का कहना हो का
5: मिस्तरान वर्जन उकना घर हेरो ना कट्टा सुगुर बनैला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा क टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
7: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेष हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
8: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
9: यही असार 27 गते शनिबारका दिन
8: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
9: डाक्टर आउने दिन असार 27 गते शनिबार
8: आरोग्य मेडिकल क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
10: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
11: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808।
0: विश्राम पाछ फेरसे स्वागत बा। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकै कार्यालयकै निर्देशन पाछ दुग्ध विकास संस्थान डीडीसी संकलन कल कच्चा दूध के गुणस्तर में सुधार अल्वा डीडीसी के कच्चा दूध के गुणस्तर सुधार के लाग कड़ाई के संग मापदंड के कार्यान्वयन करल पास गुणस्तर में सुधार देखलगवा डीडीसी के महाप्रबंधक डाक्टर शर्मन कुमार पांडे के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशन पास शंकास्पद देखा पर्ला दूध के खेप तत्काल हटेना व्यवस्था करला सेफे दूध के खरीद में फैटो एसएनएफ के मापदंड परिमार्जन करके उच्च गुणस्तर के दूध खरीद प्राथमिक मधलबाट डीडीसी के चिस्यान केन्द्र के फ्याटो एसएनएफ के आधार दूध संकलन करके चलाने पठाइन तथा आयोजना पुगल पार्छ प्रयोगशाला में पुनः गुणस्तर परीक्षण हुने व्यवस्था कल्लभा प्रधानमन्त्री कार्यालयकी निर्देशन पार्छ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग हे असार 15 गते दूध के नमूना परीक्षण कलक चिस्यान केन्द्र के चलानी में उल्लेख कलक फ्याटो एसएनएफ के विवरण से कम गुणस्तर दूध भेटगिल रह ओकर पाछ सबको चिस्यान केन्द्र के परीक्षण कलक को इंचाख देखलक संगारपस विषय में छानबीन जारी रहलक महाप्रबंधक पांडे जानकारी दिलबाट दूध के गुणस्तर में देखलक कैफियत गंभीर रूप में लेती दोषी जहाँ लसेफे कार्यवाही करना तथा भविष्य मशीन गतिविधि नई दोहर नई देना तत्काल सुधारात्मक कदम चालना प्रधानमंत्री कार्यालय के संस्थान निर्देशन दिलक प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के प्रयास तथा अनुसंधान विज्ञ दीपा दहाल जानकारी दिलवाटे। यही समाचार सब खोज खबर वाले जिना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से एक चो कैलाली जानकी गांव पालिका में बढ़िया जन्ने विपद के जोखिम में घटना समुदाय यहां बलगर बनेगी। एसई पूरक परीक्षा में 64.68% विद्यार्थी उत्तीर्ण। धनगढ़ी में हत्याकलक तनुज के सुन के मुद्रा कठाई के घर में फैला पड़ल। उप प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशन पाछा डीडीसी मधुत के गुणस्तर सुधार। रीता बकला खोज खबर तथा प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद रीता बकला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदाई टू एक पास 6 बजे के खोज खबर सुन सीखी सामुदायिक रेडियो टीका पूरा फिल्म सुनती रवि राम राम।
4: अरे सुना था क्यों बात आंधर पांधर क्यों बात
12: का हुई बाबू अपने कल का लाइट रही अपने का कर कल का लाइट रही ले यू भुइया में के हो का करे भुइया में धनवा नाल बाटी
4: सुनी ना दादू हमरा दुनु जना कोना में घास काटा रहल है मोर संग भी सब पका दर नी ना दादू हाली का करना होई एही ना सत्य हो पता के नो पुगा कोले से हुने रहा
12: ओहो ऐसी बेला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के असिया लाग के बैठनी हुई यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा फोन कई दादू अपने नी आते है ना संघरिया एक ध्यान दी। हेलो मुकेश तू जत्ते ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ तो यहाँ एक जना बाबू है ना सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिन तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल राजमार्ग 84 मीटर पश्चिम बाव पांचर बाटी ना हमरा मुकेश जत्ते ही आओ हाँ सबको काम छोड़ खा
13: बेटा संतोष मैं मोटरसाइकिल लेके आएगी जत्ते
12: सुनी बाबू सपो कटलक मने है ना जत्रा साइकिल जत्ते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा रहे पड़ता ऐसी बेला में सबसे जत्ते हुई ना यातायात के साधन वाजे पर था यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकल से अपने वो सवारी चालक के बीच सपो कटलक मनाए है ना सुरक्षित हुईना मेर से बैठा कर तुम के उपचार केंद्र पुराई पर मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भरपर में संघरिया मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच ऐसी बैठा कर उपचार केंद्र पुगा डालते हैं अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आए
14: लगा दादू सात दस से मोटरसाइकिल स्वयं से दी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई
15: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप दस लक मनिन बचाई सक दी था वो इन मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दी था सांप दस लक मने है ना छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी यही ले ऊ मने एक जीवन बचाए भारी मदद कर था विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था।
16: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
17: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
5: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
17: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
5: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
17: अब त म ढुक्क
18: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
5: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली।
19: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दी भुवाज आगिनी न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइन आउने न पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनाइन त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाएका अंश के कतरा सुघर बनाएकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी?
1: आमा, मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न, लाउन कस्तो रहर लाग्छ।
0: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
1: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त, पछि पनि काम लाउन सकियो नि।
0: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
1: न्यू अछाम जाल्पा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
2: न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टिकापुर। न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गरगहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसनका गरगहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98688147979, 98246025। अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98246628225।
3: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
4: कोट पीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैसे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
3: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
4: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
3: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
5: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM, टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

भ्रष्टाचार करो या मनन खुल्के विरोध करी, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगके कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा
1: यही असार 27 गते शनिबारका दिन
0: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
1: डाक्टर आउने दिन असार 27 गते शनिबार
0: आरोग्य मेडिकल एण्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
2: सामाजिक सञ्जालमी निकेरी जाँची बुझी भएर बैंकको आधिकारिक प्रोफाइल मात्रै फलो गरौ। कसैले लिंक खोल्लाए अगाडि त्यो क्याको लागि हो, कहिले पठाएको हो रे, कहाँ जान्छ निकेरी बुझी भएर खुल्याएको वेबसाइटको URL चेक गरौ।
3: अप्रिय घटना हुन नदिनलाई समय समयमी आफ्नो पासवर्ड बदलौ। आफूलाई केही शंका लागेले बैंकलाई छिट्टै खबर गरौ।
4: सतर्क रहौ, ठगीबाट बचौ।
3: सिद्धार्थ बैंक पठाई जनहितमी जारी सन्देश।
5: सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।
6: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकलमे जाइस् तो?
7: मै नै जाइँ, उहाँ अपन अनुहार बिगड़के घर से बाहर नहीं निकलथु।
6: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
7: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
8: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाउ, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होइति रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर, फोन नम्बर 9860071024 ओ 9046477417।
9: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी, जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुलके विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय महेन्द्र नगर कंचनपुर से जनहित में जारी संदेश।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़ो ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: उही सबै पेपर उर्को सकिया हो
1: सकियो
0: तेरो पर्सनल मोबाइल नम्बर त ब्लक गरी
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर त उही दिनै टेलिकम का अफिस जाइबर ब्लक गरी बर आयौ
0: उही बैंकमी
1: बैंकमी
0: ता
1: केही अद्दु पड्यो भ
0: त्यो त अद्दु पडन्छ भ आफ्नो मोबाइल नम्बर बदल्नु वा ब्लक भएको आफ्नो बैंकलाई नै जानकारी दिनु पडन्छ र आफ्नो बैंक खाताको जानकारी औरका हातमै पुग्दो बठे सचेत बनौ
1: सतर्क रहौ ठगी बठै बचौ
2: सिद्धार्थ बैंक पठै जनहितमै जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: आइ बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे ध्वज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उने ना पट्टा नि पैना त
5: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ
4: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नि सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान से के कतरा सुघर बना कन लबाटी
5: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
4: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864 41 208 और 9846 39 261

0: ओइ रजनी वहाँ 62 नम्बर लक्ष्य बा देखाओ त हस्ते लिखाओ त
1: मुर्गिन दाना देना जाला म काकर लक्ष्य फाद के अब न
0: एक तो तपा बाका मुर्गिन फार छे लक्ष्य से बिगेले से बक्ता की आनो हारी छ त
1: तापन जिस्काई चलाई नि होई थी नहीं तो अमन दस स्याकर बेन घर भीतर आई लागी कलचे भगई दी
0: पारक भीतर पैट का मुर्गी मुआडी व खाडी कई का भगाई खोज लखो का
1: आरम कीरा फटिना मुझ साप सिर निशा कर कई का फलाम का जारी लगाल बात तपा मुर्गी खेती बुगाई नहीं थे कि बेन अपना दाखी दूर बिना
0: हो बिना था का करना हो तपा देखती की जन नागा लगना रही सा देव तपा तो अपन घूम का बारी वो कल गिनता
1: हमरे के सापन से गड़े ना नहीं बोली मुखर थे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई लगी पति रक्षा करत लाग व अपन बचाव करत लाग साम दस न कर था
2: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाई व नी जिसके साप मने देख कर डरे था नी चला कर दूर रह लसी साप नी दस पर मुखर खेना खाजा बाहर निस्कर में नाम घास काटा बेर ख्याल बेर ल्यांग बेर छुबे लसी मने मही मारक लाग बाटा कना समझ कर पति रक्षा करना क्रम साप दस लाख रह मने सापन व्यक्ति की मारक लाग रह उसी का करबे फिर साप दस लाख रह
3: सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेती था
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

रूपा शिवजी को रूपा वस्त्र नौ में कई पनि छैन खरानी नै घास्मी शिवजी को रूपा शिवजी को रूपा शिवजी को रूपा बस्नै पर्यो भने देखि।